श्री गिरीश ने गाई संत मीराबाई की ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत चोखा मेळा की, जिसे गाया है जयश्री कुलकर्णी ने।

जय श्री कुलकर्णी ने गाई संत चोखा मेला की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं पद्माकर थत्ते के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर थट्टे के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

ಗೇಂದ್ರ ಗೇಂದ್ರ ಗೇಂದ್ರ ಗೇಂದ್ರ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग गुरजोड़ी तोड़ी पर ख्याल. कलाकार हैं प्रबीर बंदोपाध्याय. आपके साथ तबले पर हैं जॉयदास गुप्ता और हारमोनियम पर हैं अमिताभ भट्टाचार्य.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to a khayal in the rag Gujari Todi. Our artist is Prabir Bondopad. Accompanying him on the tabla is Joy Das Gupta and on the harmonium is Amitabh Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुरजोड़ी तोड़ी पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे प्रबीर बंदोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राग झप ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं उज्ज्वल रॉय। आपके साथ हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग गुरजोड़ी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज प्रबीर बंदोपाध्याय। This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Jhap Taal. Our artist is Ujjwal Roy. Accompanying him on the harmonium is Devashish Adhikari.

0: अभी आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत झप ताल पर तबलावादन सुन रहे थे। कलाकार थे उज्जवल राय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन झप ताल। आवर आर्टिस्ट वॉज उज्जवल रॉय। अकंपनिंग हिम ऑन द हारमोनियम वॉज देवाशीष अधिकारी। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं रागम 2400 घंटे हिंदुस्तानी संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। स्टे है शास्त्रीय गायन, कलाकार है दिग्विजय वैद्य। आपने प्रारंभ में प्रस्तुत किया राग मालगुंजी सुनते हैं। विलंबित छपताल में निबर रचना के बोल है बन में चरावत गैया, और द्रुत तीनताल में निबद्ध रचना के बोल है मुरली की धून सुनी। साथ संगत हारमोनियम संजय गोगटे और तबला विकास पुरंदरे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रागमाल गुंजी, कला थे दिग्विजय वैद्य। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं दिग्विजय वैद्य द्वारा प्रस्तुत राग देसी। विलंबित त्रिवट ताल में निबद्ध रचना के बोल है मारे डेरे आओ। सात संगत तबला आनंद बदामीकर और हारमोनियम संजय गुप्ते।

श्रोताओ, अभी आपने सुना राग देसी, कलाकार दिग्विजय वैद्य। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे आनंद बदामीकर और हारमोनियम पर थे संजय गोगटे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं कल नाही पावे और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं दिन गए बीत सुख के. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधुप मुद्गल. ही फर्स्ट प्रेजेंट्स राग भटियार इन विच ही विल प्रेजेंट अ बड़ा ख्याल set to vilambit ektal. The lyrics are kala nahi pave. This will be followed by a chota khayal set drut teen tal. The lyrics are din gaye beet sukh ke. He is accompanied on the tabla by Shri Prasoon Chatterjee and on the harmonium by Shri Samarjeet Roy.

0: अभी आप पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग भटियार सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: दैट वॉज राग भटियार संग बाय पंडित मधुप मुद्गल।
0: और लीजिए अब सुनिए पंडित मधुप मुद्गल का गाया राग बिलास खांडोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं नीके घुंघरिया, और तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं नीके नीके शोभा देखत। तबले पर आपकी संगीकी है प्रसून चटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने।
1: ही कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद राग बिलास खानी तोड़ी इन विच ही प्रेजेंट्स द बड़ा ख्याल सेट टू विलंबित एक ताल। द लिरिक्स आर नीके घुंघरिया, दिस विल बी फॉलोड बाय द छोटा ख्याल सेट टू विलंबित तीन ताल। द लिरिक्स आर नीके नीके शोभा देखत।

0: अभी आप पंडित मधु मुद्गल का गाया राग बिलास खानी तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चैटर्जी ने और हारमोनियम पर समरजीत राय ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग बिलास खानी तोड़ी वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित मधु मुद्गल। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चैटर्जी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री समरजीत रॉय। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: कर्नाटक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में मीरिंतवरकु श्री सुंदरपल्ली सूर्यनारायण मूर्ति क्लारिनेट वाद्य कचेरी विन्नारु। वाद्य सहकारं वायलिन पै श्री एमएसएन मूर्ति, मृदंगं पै श्री वीवी रमण मूर्ति। ई कार्यक्रमं आकाशवाणी विशाखपट्नं केंद्र समर्पण। मीरु विंटुन्नारु भारतीय शास्त्रीय संगीतान्नी डीटीएच पै निरंतरं मीकु अंदिंचे चानल रागम।
1: You were listening to a Carnatic classical clarinet recital by Shri Sundarapalli Suryanarayana Murthy. He was accompanied on violin by Shri MSN Murthy and on mridangam by Shri VV Ramana Murthy. This program was contributed by
0: Akashavani
1: Vishakhapatnam for Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं शास्त्रीय गायन, कलाकार है सानिया पाटणकर। आपने प्रस्तुत किया राग ललत गौरी सुनते हैं। विलंबित तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है प्रीतम सैया दरसदी खाजा और द्रुत तीन ताल में सुनते हैं सरगम। सात संगत तबला श्रीकांत भावे और हारमोनियम शुभांगी भवसार। तो आइए सुनते हैं राग ललत गौरी, कलाकार सानिया पाटणकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सानिया पाटणकर द्वारा प्रस्तुत राग ललत गौरी। आपके साथ तबले पर थे श्रीकांत भावे, हारमोनियम पर थी शुभांगी भवसार। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं सानिया पाटणकर द्वारा प्रस्तुत राग बैरागी तोड़ी। विलंबित छपताल में निबद्ध रचना के बोल है धरले ध्यान गुरुजन का, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है लग्न लागी तुमसो और सरगम। सात संगत तबला सचिन राजोपाध्य और हारमोनियम उपेंद्र सहस्रबुद्धे। तो आइए सुनते हैं राग बैरागी तोड़ी, कलाकार सानिया पाटणकर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना है राग बैरागी तोड़ी। कलाकार थी सानिया पाटणकर। आपके साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्याय, हारमोनियम पर उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है अभोगी ध्रुपद. कलाकार हैं शर्मिला रॉय चौधरी. आपके साथ पखवास पर हैं तापस दास और हारमोनियम संगी हैं कमला खम उपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है अभोगी ध्रुपद. कलाकार हैं शर्मिला रॉय चौधरी.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट A Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Abhogi Dhrupad. Our artist is Sharmila Roy Chowdhury. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Taposh Das and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Abhogi Dhrupad. Our artist Sharmila Roy Chowdhury.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप अभोगी ध्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थी शर्मिला राय चौधरी। आपके साथ पखवास पर थे तापस दास और हारमोनियम संगीत थे कमला खम उपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गोपाल मिश्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं पिंटू रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल पर तबला वादन। कलाकार हैं गोपाल मिश्रा।
1: You were listening to Abhogi Dhrupad. Our artist was Sharmila Roy Chaudhuri. Accompanying our artist on the Pahavaj was Taposh Das and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to a tabla recital in Teen Taal. Our artist is Gopal Mishra. Accompanying our artist on the harmonium is Pintu Roy. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Gopal Mishra.

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल पर तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गोपाल मिश्रा और आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे पिंटू रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट वॉज गोपाल मिश्रा। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द हारमोनियम वॉज Pintu Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: कीर्ति चट्टोपाध्याय। अदर वॉइसेज इंक्लूडेड मनोज मायंकर, सुधीर राजोरिया, निशा भारद्वाज, होंगला फॉर्म एंड दिलीप झा। प्रोड्यूस्ड बाय नितिश अरोड़ा। दिस वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल इंग्लिश फीचर्स यूनिट एंड केम टू यू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वी एस पी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
1: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान अकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसिन कीर्तन में भी माहिर है और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
2: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
1: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh बालाजी पेटा वेंकटर अमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
2: श्री जय श्रीराम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ बालाजी पेटा वेंकटरमण भागवतर इन द राग ललिता सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदि।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री एम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

अभी आप सुन रहे थे सितार पर राग बसंत मुखारी, कलाकार थे पंडित गिराज। ये है रागम, डीटीएच पर हर दम हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग रागेश्री, जिसमें आलाप के बाद विलंबित और द्रुत गतें होंगी तीन ताल में। That was राग बसंत मुखारी। You are listening to Hindustani Sitar Recital by Pandit Giriraj. This is Ragam, 24/7 DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now the artist renders Rag Rageshree.

ये था राग रागेश्री। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित गिरिराज। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हरदम हर समय डीटीएच रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित गिरिराज। द कंपनी आर्टिस्ट वॉज पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Rag 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं अभिजीत राय चौधरी का बजाया सर पर राग नटभैरव। विलंबित एवं द्रुत दोनों बंदिशें तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सरोद रिसाइटल बाय अभिजीत राय चौधरी। ही इज प्रेजेंटिंग राग नटभैरव। बोथ द विलंबित एंड द्रुत बंदिश आर बेस्ड ऑन तीन ताल। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

रागम 24 घंटे सातुदीन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरुद पर राग नट भैरव। आइए अब सुनते हैं उन्हीं का बजाया सरुद पर राग चारुकेशी। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अरुण कुमार भट्ट। दिस रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग चारुकेशी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

अभी आप सुन रहे थे सरोद पर बजाया राग चारू के शी। वादक कलाकार थे अभिजीत राज चौधरी। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। नाउ यू आर लिसनिंग श्री अभिजीत राय चौधरी इन सरोद। ही वॉज प्लेइंग राग चारू के शी। नाउ ही इज गोइंग टू प्रेजेंट राग मिश्र भैरवी। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री अरुण कुमार भट्ट।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अभिजीत राय चौधरी का बजाया सरोद पर राग मिश्र भैरवी। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग सरोद बाई अभिजीत राय चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं रहीम नाम तेरो और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं ऐ करतार. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal recital by Ustad Mazhar Ali Khan and Ustad Jawad Ali Khan. They begin their recital with a rendition in Raag Gunkali. The Vilambit Khayal is set to Ektal and the words are Rahim Naam Tero. The Drut Khayal is set to Teen Tal and the words are Ay Kartar. They are accompanied on the tabla by Vinod Pathak, on the sarangi by Dilshad Ahmed and on the harmonium by Zameer Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग गुनकली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं अब मोरी राम, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने।
1: यू जस्ट हर्ड उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां परफॉर्मिंग राग गुनकली। They were accompanied on the tabla by Vinod Pathak, on the sarangi by Dilshad Ahmed, and on the harmonium by Zameer Ahmed. Ustad Mazhar Ali Khan and Ustad Jawad Ali Khan will now perform Raag Todi. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal and the words are Ab Mori Ram. The Drut Khayal is set to Teen Taal. The accompanists are Vinod Pathak on the tabla, Dilshad Ahmed on the sarangi, and Zameer Ahmed on the harmonium.

0: अभी आप उस्ताद मजहर अली खां और उस्ताद जवाद अली खां का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने, सारंगी पर दिलशाद अहमद ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल रेंडिशन इन राग तोड़ी बाय उस्ताद मजहर अली खां एंड उस्ताद जवाद अली खां। दे वर अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक, ऑन द सारंगी बाय दिलशाद अहमद एंड ऑन द हारमोनियम बाय जमीर अहमद। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

अभी आप सुन रहे थे संजीवनी जोशी और साथियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। अब सुनिए श्रीकांत पारगावकर के स्वर में दी आ कुलकर्णी की रचना, संगीतकार है राम कदम। जय जय।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे मालती पांडे के स्वर में कवि ब्रह्मानंद की रचना। कार्यक्रम की अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है बबनराव नावडीकर ने।

आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संत मीराबाई की, जिसे गाया है कीर्ति शिलेदार ने।

श्रोताओं, अभी आपने कीर्ति शिलेदार के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना सुनी। अब सुनिए संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना विठ्ठल शिंदे के स्वर में।

विट्ठल शिंदे के स्वर में आप सुन रहे थे संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए निरोबा राय की रचना माणिक वर्मा के स्वर में।

माणिक वर्मा के स्वर में अभी आपने सुनी निळोबा राय की भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम में अब सुनाते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना।